छुट करे को मेरी बरसुन दी जय खोल कुवार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

उपवासक संबंधी नूर वर्ष कुरस झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी

असंख मूर्खन घोर असंख चोर हराम खोर असंख मर कर जाहि जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख मलीश मल पखाहि असंख निंदक सिर करहि भार नानक नीच कहै विचार वार आना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कह हे सिर भार हो अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे तिस सिर नाहि जे फुरमाए तिव ते पाहि जेता कीता तेता नाव बिन नावै नाही को ताव कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार भरिया हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरसखे मुठ लीती कपड़ो हे दे साबून लइया ओ धोए भरिया मत पापा कै संग धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाह कर कर करना लिख लै जाह वापे बी जापे ही खाह नानक हुक्मी आवह जाह तीर्थ तप दया दान जिको पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाव अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई विण गुण कीते भगत ना होए सुवास्तात बाणी बरमाओ सत सुवाण सदा मन चाओ कवन सुवे लावक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माफ कवन जित हुआ वाकार वेल न पाया बंडती जे हो वैले कुरान वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान थित वार ना जोगी जान है रुत माफ न कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जान है सोई किव करा का किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखा है एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता

लख होवे, लख वह लख वीस लख लख गेड़ा किया है। एक नाम जगदीश त्राहि पद पवड़िया चढ़िया हुए। इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा इरी स्नान नदरी पाई आए।

न ठगी जावे। जिनकै राम बसैमन माहि तथै भगत बसै के लोह करहै आनंद सच्चा मन सोई सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नर नियाल तथा खंड मंडल वर्पण जी को कथा।

सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता।

त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रै न पुत्रै न सुत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै न साकं सुलीकया मितो अमीक सदैव प्रभाय अजय है अजा है भगवती शांतु है प्रसाद के जा हजूर है के हाजर हजूर है हमें सुन सलाम है समस्तुल कलाम है।

करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तन है, जाके कर्ण है, मनमानिय है, जगजानी है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है, करुणाकर है,

नृपनायक हैं, सर्पायक हैं, पापंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जपजापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे,

नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंकी नमो आशास नमो बाग बंकी अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपहु अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ परमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई।

हमरे दुष्ट सब तुम कावहु आप हाद मोहे बचावह सुखी बस है मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब कौआ संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा।

जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहरा आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

कृपा दृष्ट तन जाहिने हरि हो ताके ताप तनक महे हरि हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुच्छा श्व सकै न कोई।

संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस पुनतीन कहित जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

तैसार न जानी गुरु बाजो तो तैसार न जानी ते ही गुण संसार परम सुत्ता सुत्या रहन वेहाणी।

उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी।

सब कुछ तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए। आप पछाणे पीत मिलै बुठा शब्द लाए, चेमा चमिया मदद बद सदा तृष्णा भुख सब जाए।

कुंसंगमय उदारो सुखमनि सुखमृत प्रणाम भगजना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कज बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंधिन जागै, प्रभ कै सिमरन पौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साथ कै संग सर्व निधान, नानक हर रंग

कृष्णा बुझाय प्रभु के सिमरन सब की सुझाय प्रभु के सिमरन नाई जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूरण आशा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदमाय समाय प्रभु जी बसै साथ की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोता जे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अवनासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरे पाक प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबू ना झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बाणी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन ने चलासन प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन प्रभु कै सिमरन अनचुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत ना पार सिमरै से जन जिन को प्रमया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन पय से जति दाते हर सिमरन नी चौकुण जाते हर सिमरन तारी सब तरणा सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यो सगलाकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर किरपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमर

जपो मन रंग नानक पाईऐ साथ कै संग। जय मां रखे कने जाय ना को सार का नाम हुआ संतोषा। जय पैड़ मान गुबारा का नाम संग उजियारा। जा पन तेरा कोना स्याण हुआ।

हर हर अमृत बरखै। भजना की वर्तन नाम संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओटर के नाम, उदरे जन कोट हर जस करत सन दिन रात। हर हर

जानस को सर्वत्र मैं श्रेष्ठ रमर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सात संग दुर्मद मलेरिया सगल उद्दम मैं उद्दम पलार का नाम जपो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी अर को जसुन रसन बखानी

अष्टपदी दस वस्तु ले पा छ पावे, एक बस कारण भी कोट गवावे। एक पीना दे दस पी हिले तो मूड़ा कौका करे, जिष्ठा कुर्सो नाई चारा ताको की जय सद नमस्कारा।

हस्ती असुभस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता मिथ्या त्रोह मोह विमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत सात की शरण नानक जब जब जीवै अर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनै मिथ्या स्पद रब को हिरै मिथ्या नेत्र पे कत प्रत्यारुपाद मिथ्या रसना पोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार।

कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता ब्याय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो कृपन के निरारत दाम तन तन तेजन जे कट बस्योर नाव नानक ता कै बल बल जाओ रैत वर्क चवर्क महात्मा नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जान नार प्रभु पर बीन बार पेकना काऊ पीन अवर उपदेश है आपना करे आवत जावत जन मैं मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिख तरह संसार।

जे प्रसाद आरो कंचन दे लिव लाओ तिस राम सने जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुपावै हर हर जस कै जे प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाए दुलभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसादा पुकन पैरी जय मन तिस सिमरत को आलस की जय जे प्रसाद आश्वास्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत्य सत्याय तिसत्याय जो एक अलख है या उमा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करै पुन बोदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निक्की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनै करना जे प्रसाद पे कह विस्मा जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुसै जे बसना जे प्रसाद अस कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण पलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुसै समावै सा प्रभ त्याग वरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप प्रेम मन मोड़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिस जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावै साचरे मन मेरे तू तास्योरा जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सोनाव आप गवाए स्वर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रकाश प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ

पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी सात कै संग मुको जलो सात संग मल सगली खो सात कै संग मिटै विमान सात कै संग प्रगटे सुज्ञान सात कै संग बूझै प्रभ नेरा सात संग सबोत निबेरा सात कै संग पाए नाम रतन सात कै संग एक ऊपर जतन सात की महिमा बनै गौण प्राणी नानक सात की शोभा ब्रह्मा समानी सात कै संग गोचर मिलै सात कै संग सदा पर फुलै सात कै संग आवै बस पंचा सात संग अमृत रस पंचा सात संग होए सब की रेन सात कै संग मनोहर बैन सात कै संग नाकतों तावै सात संग अस्थिर मन पावै सात कै संग माया ते

ने साथ बढ़ाई नानक साथ प्रभु बनाई। साथ का संग ना कब हूं तावे, साथ का संग सदा सुख पावे। साथ संग बस्त गोचर ले, साधु के संग अजर सह। साथ का संग बस थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साथ का संग दृढ़ सब तरम, साथ का संग केवल पापम। साथ का संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान। साथ का संग सब कुल उदार है। साध संग साधन मेट कुदम निस्तार है। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सबको वरसावे। साध संग त्रम राय करे सेवा, साथ कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम नानक, साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग ने कचकाल दर्शन पेट तोत निहाल। साध कै संग कलु कतर है, साध कै संग नरक पर हर है। साध कै संग आऊँ आसुएला, साध संग बिछड़ दर मेला। जो इच्छा सोई पल पावे, साध कै संग ना बिरता जावे। पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै, साध सुन रसै। साध कै संग सुनर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सरपण निस्तरै। साध कै संग लगै परम मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा।

ब्रह्मज्ञानी सकल किरीना तम रस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब परमया ब्रह्मज्ञानी ते कज बुराना पया ब्रह्मज्ञानी सदा समदसी।

ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जायद आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का

पसरियो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसे मध्य तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक। उस्तत करह नेक जन अंतना पारावार, नानक रचना परब रची बहुविध अनेक प्रकार राष्ट्रपति। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी। कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट बन प्रमहदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते। कई

जैसे दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किचके नो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हो कै संग, बूझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मर बिन सावन जाए, नानक सधीरिया समाए, आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ, आपकिनो आपन विस्तार सब।

की त्रमते रहत, संत कादो की सदमितिया कहत, कीर्त निंदक का तुरी पया, नानक ज्योति पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दुर्गह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजन आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तिष्ठे कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कितना मिटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सास की रास, सब किस वर्त तिसका किया जय।

जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसके शरण सर्व सुख पाव है, तिसके अदर सब पाप मिटाव है, अब स्यान अब सगले छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जा ना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की कृपा प्रित पाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख के गुर दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काट, गुर का सिख विकार ते हट, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी हे, सतगुर सिक्का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिक्को जी नाल समार, गुर कह ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत त्यावे, मन बेच सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सदगुरु जिस हृदय रणाओ, अनेक बार गुरु को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कच परम, सहस्याणप लिया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाइये, सफल दर्शन पेकत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रेत, भेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दीर्घ गवे, सुनकर वचन कर आघाने, मन संतोक आत्म पतियाने, पूरा गुरु के जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पे कह होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिसले मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सत पूरक पूर्ण विवेक, काउ बोलना पोचित प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाए, अनेक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है, सद बलियारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, यो रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए, उस प्रका नायक दे विनाश, जाके मन प्रकटे गुणतास, आठ पैर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक ब्रह्म हो दुखते नासे, तपत मै ठाड़ वरताई, अनंत भया दुख नाठे फाई, जन्म मरण के मिटे देसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पहु चुका निरपोए बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जपना मुरारी, तित पाए चुके परम गवण, सुन नानक हर हर जस सरवण, निर्गुण आप सरगुणे भी ओही, कलाधार जिन सगले मोही, अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोतर व्यार उपरंग, पय प्रगा साध के संग,

संत जना मिलकरो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर पाओ सममित विसारो, चरण कमल हृदय में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरत दृढ़।

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है सुहाओ आठ पहर प्रपेखो नेरा मिटे अज्ञान विनसय अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मनिषे नानक फल पावो हालत पलत दोयले हो सवार राम नाम अंतर उर तहार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै ति साज परीखिया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच वापार करो वापारी दरगह निवह खेप तुम्हारी एक टेक रखो मन माहे नानक बोर ना आवह जाहे

अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तहन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरुख प्रधान जिस मन बस

संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ जीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस कट माहे।

करते की मित न जाने किया नानक जूत पावा सुवरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मात जन जद साया स्वाद